0: नामको बँक शैक्षणिक कर्ज, नामको विद्या साधना,
1: आणि हे शैक्षणिक कर्ज मिळते आहे फक्त 9% पासून. 5 लाखांपर्यंत तारणाची आवश्यकता नाही.
0: कर्ज मर्यादा 50 लाखांपर्यंत.
1: परतफेड कालावधी 5 ते 10 वर्ष.
0: आजच जवळच्या नामको बँक शाखेला भेट द्या.
2: दूर दराज के महल्लों तक सुनाई दी, जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा. खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा. मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था. एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई, उसने तो मांगी नहीं थी. सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है. कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेजी थी. अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली. सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिख कर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था. लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था. पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला. जो बदला था वो तो गुजर गया.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

आवाज वाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिली। हाय देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, कितनो जीवन की पसंद बाहर गाओ।

0: जाओगे।
1: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
2: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस हुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
3: मलैया जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों झगड़े चले आएंगे।
1: जो सरकार।
4: अरे कहाँ भर के ये सुनती नहीं, ओ गोपाल की माँ।
2: क्या बात है जी?
4: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है, और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
2: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
4: अब कहने के लिए रही क्या गया है, ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिषविद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
2: गोपाल की बात कर रहे हो?
4: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया, और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इसको भगाने लगा है।
2: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
4: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
2: भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़े ही पकड़ी जा सकती है।
4: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ ले, पगड़ी उछाल दे, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं, और ये सब दोस्त तुम्हारा है।
2: मेरा दोस्त कैसे हो सकता है?
4: तुम्हें तो जल्दी की, अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया होता।
5: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरीब।

मेरा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।